धौन तुबिडावे तेहेन मीने का शल्लदा इब्दा तेना हेनेन अमसे हो हदी दाने आदे तून उम्बा तूना ना तु तेदने उन उधई ही दाब एहेनो दिवाती भी दाब गाल मिंदायनो उन उधई मीन का दुकान दन्ने हे अरे आन शाद गीक सीन हे अरे वेत अरीद गीक सीन हे अरे आन वे न दल्ली बहे इत्ते न ते इदलीब ने तुआ हो ए आई वा उम्बरे तुमामले इफ्तिक दाम तिनित उम्बतियो हदी दानेत हेनिन निसरी वे तुक न तू न दाई न निसरी ओकना अवरे दाई बदाई इन्ने दोकना लाब दाई बदाई इन्ने दोकना वे तुनाती दा इन हेनिन उम्बतियो हदी ने नेत उतक अवल उन उतक दल्लीब तक एक एक रबे दल्लीबे का उम्बरु उन रबे दल्लीबे गुदान हो अर्री वो नान हो अर्री वे तिंदिये का उत्तोना बरुक दिले बा तिंदियो दाई न दल्ली बा शबुब न दल्ली बा तोना शिवप्तित दाई तकतियक दाई दुलुब दल्ली बाया उधारे एनो को मिड्डा कर्री फाया फायदे कर्री फा एताने न तिंदी आया इदाई तिंदी आया अरे तोन तोकन दिल बा हा हा एया गीक्सा तिंदियो उगीगिस्त उकन मिशु अमागन ओधे के थे अमागन तिनीवे का लेत लेत बितकाय बरोक के तिरिशे दोक अरवेक के तिरिशे तो मगी तो वत शबुब तो वकक ते कानी हमसे दुकान ते बरियेक रबे ते बरियेक उन रबे उन जमन ए बरी दई कतब जमन दई कतब एकतीने ते है उन मर मर जमने मर जमने तिशबोबे एदने तकारा एहें इंबते जमन शुबीत शबुब ना तिशबोबीत बरे तिनी वाया अरे जमन फाया मेने तो करा उम्बतो यक्सेतित फिदने तिंगी दागी गिस्तिनिया ले तिंदिये का तुमादा बरियो तेफे तुम बतु अनहाते कती तुमादा तेन हदियो ओ दे कितरेशित बे तुनाती दा दाई ना तिशिशबोबी है तिनी वे तोनात तू ना तू राव ना ना तू तिंदिये तो तो उराबे कतियक तुम अरे कतियक उन द खुदरावाद कतीने बाबिंजे ले कतियक जीरजी ले कतियक असरे यो असरे कराए नसरे का एनो कब कितिये उन बरो असरे बगदा सेतीत उदाइब शिवफ्तीत शिशबोबी शुगुडीत देगी गिस्तिने धन तो बिडावे दाएब शाला दा तेना गले करो शाला मैं किरतीत ओम कर उदाइब दई तवा तेना हेने हल्ला नुआ दिने तोन उन ओधे दुकाने हुआ आन इन इन द रबी गीक से हुआ इन बरे ओ हरीद नहीं तोन तो दाई ओधे ही ना तून ते मगे ओ फिदना दा साना बिम बतियो इन बलिब दियो क्नमियादी मसे हदीद नहीं हेने उत तोन उन तेन हल्ला न हदीदा ने नाती शात ते कतियक तोश तोकन तो शात अमसे गीक सात इंदिये का बरुक तोया हर्री दो दाई था आती हर्री दाया मल्ला तोया असे दासे ती ओधे रुबो किलो व नुस किलो व वेर व तिनियो बेन ओदोर ओ तो वज व मेजान तो दाम तिनी नाती दाए दाउ जिने ती तिनी वाया तू शारे तोकन शिविप्ती तो बैतरे से तोपती शंबी वदाई ते कतिय बित्ताय अमाक ते कतियक ओधे लेत के तिरशित अरे तोश उन ओदोर उगीक साते अदने तीफ दई कुमेनेक वे न दई कुमतेक वे न ओदोर नदीफ मीनान नस मीनान दासित उम्बतो तोकन गत्तीत नि आया ना ना तु तिंदिये उम्बतो तीफ दई दायतित दई कुमेतित मल्ल दिनीवे क उधई यमकिन उम्बतो कितरशित यमकिन दायत कित्ते बेत उम्बतो मल्ल बरोक कितरशेदो दोग दाई न कित्ते हराम होइत तोशी का बेतो नाती दाय उम्बतो गुनो खैदी तू न तू राव ना ना तो तिंदिये रबे बुएर गीक सा तिंदियो हैडी बिकतीने क्वारे बिकतीने इदाइब की दन्ने आ एमक हुई दी एमक की एमक हुई दी थी इदाइब की दी थी मतलब हर्रो इकतीये एरो इकतीये दाई न ओधई तिनी उधयु नहीं इन इन तुने सरी वे तुक न ते करना दाई न निसरी ओकना ओ तो न थो हदी नने ओ तक रबे गीक सी नहीं हुआ ओ राव हो इनी नुआ हो इनी नन अरे नाथ शंबीब इदाई इंदिये तोना हुआ तोना तो इनीने तोकन मिड्डा इनीने तोना हुआ शेविप्तित तोना तो दाई इनीने तोना उम्बतु अर्रीव अरे उन तुमेजान बाबा डिन अनांदे दुकाने बेफे तुमेजान दाई वजन अउजे नाना उम्बतु बरे क्रंशी दोकना हराम हुई बातो शिक्का बाना कुबे तो नाती दा उम्बतु मुहिमीत तू राव तित्तेन तिदाई तिगीक्से गीगीगिस्तेनित इम्बते शगवा ढरुआ दे हैं सुगुन्ना तो धाई द दे लेबना अरे आन तो एक ना तो इन रिस रिस्ती अरुआ दे हैं
तोय रेसानात शीश बोबनात दाई था आती रे दिलबना उन्द अरे मताए में हुआ मताबिख हुआ एहन आंद उराबे गिक्से न मताए मसलन मताए ले एहन अंबारा तुम्हारे उधाई इधर ते दिलबनो देन ओदोर दाई तुम्हारे रे दिलबना तुम्हारे तोकना तोने तुनेती ददास्ते ने दाए बने ए दाए मियाँ हीना दाई था आती नबत फेशात उम्बतो हीना अरे ओमीन ओकना तुंदिवा तोकना मत अमी बेफिर तिसिन ही सा तुनासास उन तरबेजा ते कतिएक तेना तुम्हारे इधर नहीं ते कतीने इंबरे दाए सिनस्तित दाई था आती तेनी वाया अरे ओ तक ओराव मताबिखे बहन एंद इकतीने उन ओदोर यहाँ ते गिदने वो यहाँ ते इने बेन ओदोर या एक तिसनी सना उगर ओक तिसनी सना ओधई लहित अमाग नहीं थी बरे अमाग बद्दी मियादी बेतुनाती दा उम्बतु अर्रिवोकना शाला दाई था आती दाते ना दाई न तिमिर ना दाई न ते इना कसान हन उन अल्ला कसेन दाई न इसरी उनको दाई न दाया ना सका न दियायोन एने निस्तिरोकने